बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: मोहब्बत हो, किसी ने बताया मुझे
1: Did he win a prize? Or is he a leader?
2: Leader?
1: Yeah.
2: Dead body, eh?